0: चाकर लगे चाकरी नाले गरबार गल्ला करे कनेरिया खसना पाए साध आप गुआए सेवा करे तां किश पाए मान नार जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
1: जो जी हो सो गुवे मुह का कया वाओ बीजा भिख मंगे अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कद न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंतर वस्त समावे दूजी हो वै पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ हो वै नानक सिफत बिगा।

शाहो सरशाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो। सतनाम श्री

तू दिया गै बिनवता। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद बह

0: पौड़ी वटी हूँ अडाया पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, माण महत्ता तेज अपना आप जार
1: सर्व कला।

दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवाय, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहयो

क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संतहो, सबद तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच सबद तित कर सभागै, कर सभागै सबद वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तितकार अनहद वाजे, आनद सुनहो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो, एह वस्त तजे नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो, सलोक महला पंजवा।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती दी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद न सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई, जिस डिठाए सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए। सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय,

गुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

विषादन प्रसादन दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो।

नानक नाम निरंजन गाइया पाइया सर्व निदाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

शरण पर्यो पूरन परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रह स्वर्ग मेरत पयाल भूमंडल सगल व्यापी मा

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेले सगल जगत चंगे आईया।

0: तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तैन सच जो मत मैं सो कच न कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा

का किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ, पहनी रहन जिन्ना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार।

जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कौ जाणै पहे, नानक ताता दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक

जब लो नहीं भाग लिलारी उदा तब लो भ्रमते फिरते बोतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबू मिटे नहीं रे पछतायो। तत्व विचार यह मथुरा।

0: सगळ श्रेष्ठ लगबे तरो।
1: तेह जन जाचो जगत पर जानियत, बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो। परमातीत परमेश्वर कह रंग रंगयो, बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो। अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो, बिन

0: भगवंत रस नाही और काम स्यों, मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर, भगत कहेत पाए रहो मिल राम स्यों। अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी, पुन भेद बिरंच विचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जगतारण को, गुरजोत अर्जुन माहे तरी। जग और न याहे महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद न जान बियो। परताश हृदय गुर अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: काल समुद्र पै रूप, प्रगट हरे नाम उदाहरण। बस है संत जस हृदय, दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार, तास बिन अवर न कोई। मन बच जिन जान्यो, पयो तहे संसार सोई। तरन गगन नव खंड मह, ज्योत स्वरूपी रहो पर। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जुन पर तख हर। अजय गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै। नित प्राण बाची है, वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर टुले, नाम अमृत मुख लिहियो। गुर अर्जुन सिर सतर, आप परमेश्वर दियो। मेरे नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो। हर भंस जगत जस संचरियो, सो कमन कहे श्री गुर मोयो।
2: देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो, श्री गुर ने बैठायो। रहस कियो सुर देव, तोह जस जय जय जंप। असुर गे ते भाग, पापिन पीतर कंप। काटे सो पाप तिन नरों के, गुर राम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जन को दे आयो।
3: निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगट तिन आगर। गहर गंभीर थायत बड, सुपर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करे कंतूहल।

जाय। अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफ तख सम दीन नूर अर सोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजण सचा पातशाह सिर शाद शाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सजण सचा पातशाह सिर शाद शाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पाया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मंगल साज पाया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया।

मन प्रीत लाग वाग कब मिलिया पूरन पते सहजे समाइया गोविंद पाइया देहो सखिए मोहे मते दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगते पाया बिनवंत नानक करहो कृपा लहो मोहे लड़ लाया पाया समारा हर रतन विसाराम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाराम मिले संत प्यारे दया तारे कथे अकथ विचारो एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ पह कर विनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह साहा अटल गणया पूरन संजोग राम सुख है समूह पया गया वे जोगो राम।

बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लेव लागी आनंद आनंद दिन वजहे वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लेव लागी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम।

0: मेर शरीर का एक रथ एक रथ वाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता है सात जुग रथ संतोख का धर्म गे रथवाओ त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ तो अप रथ पे का सत अगे रथवाओ काल जुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ महला पहला
1: साम कहै सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सब को सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाए लय प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन वह रंग किया कल मैं बेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलो भया नील बस्त्र लै कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए पाओ नानक मुखंतर पाए पौड़ी।

कमल रुख सरायरा अत नीरक अत मुछ ओए जे आवे आस कर जाय निरासिकित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिटत नीवी नानका गुण चंग्याईया तत सब कोने में आपको पर कोने में ना कोए।

0: पहला
1: पाठ पुस्तक संध्या बादंग शिल्प जस बगल सुमाधंग मुख झूठ विपुखण सारंग त्रैपाल तैहार विचारंग गाल माला तिलक लीलाटंग धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सप नहचो कर्मं कहो नानक नहचो त्या।

0: नानक तग न टुटई जे तग होवे है जोर महला पहला।
1: नाय मन्ने पत उपजै साला ही सतसू दरगे अंदर पाईए, दरगे अंदर पाईए तग न टूट सपूत महला पहला।
0: तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी, तग न पैरी तग न हथी तग न जेहवा तग न अखी, वे तगा आपे वत्तवड़ तगै वरकतै लै पाड़ करे व्याहो।